vi samo tripulari tanu. Vidite, sakale sam san. Kaušik, sunov, banda i heban. Kutila kala, vasa liđa kula gala. Tuma hata kahu jo čaha uvara. Kahit taap val rošu hamara. Sur samad karani karahi. Kahin janab hi aap. Vidyaman ran paayani. Kayar karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उघरे पटल रसु